0: जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: जगजीत रण है, जग की करण है, मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: संग पर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है,
0: ब्रह्मंड से है, कल खंड से है, परते पर है, करना कर है,
1: जापा थपा थापा कृता कृता अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है, करना कृत है, कृता कृत है, तानी कृत है,
1: ईश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृता अमृता अमृत है,
0: जब्बा कृत है, अमृता अमृत है, निर्नायक है, कल कायक है,
1: संपर है, कुरनाल है, निरपनायक है, सर्पायक है,
0: पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पिचंग पे आते शंद,
1: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज
1: शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
1: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग बभूते,
1: लंकर रूपे, लंकर लंके, नमो आसास, नमो बांक बांके,
0: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक श्री चंद,
1: पांच लख पाखो,
0: अकाल दयाल लेख भेख,
1: नाम गाँव गहा टह,
0: अनाथे परमाथे, अजोनी अमोनी,
1: नारागे नरंगे नरूपे नरेखे,
0: अकर्मंगा परमंगा गंजे अलेखे, पुचंग पयाते शंद,
1: नमास्तल परनामे, समास्तल परनाशे, अंजल नामे, समास्तल निवासी,
0: कामंग पैपुते, समस्तल स्वरूपे, को कर्मंग परनाशी, सो धर्मंग पैपुते,
1: सदानस्तंग परनाशी, करिमल कुनंदा, समास्तल निवासी,
0: अजाय भूते जाय गनी में, हरियं करियं करीम रही में,
1: चतर चक्र वर्ती,
0: चतर चक्र पुक्ते, श्रियं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दुकालंग पर नासी दयालंग स्वरूपे,
1: सदा अंग

0: बस की उपज्ञान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बह सो बतायो
1: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
0: काहुला पहान पूज तरियो सिर काहुला।

0: एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया।
1: तिनके मन वसिया जिन धुरो लिखिया,
0: फिरे कनेरे करे गल्ला गली कने ना
1: पाया। कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया,
0: पवित्र होए सेजना जिनी हर त्याया,
1: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहत सियो, पवित्र संगत सबाइया।
1: कहंदे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया,
0: नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
1: करमी सहज ना उपजे बिन सहजे सहसा न जाए,
0: सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहसा जियो मलीन है कि संजम धोता जाए,
0: मन धोवो शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाए।
1: कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा एव जाए।
0: जियो मैले बाहरो निर्मल जियो, तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
1: तिश्ना वड्डा रोग लगा मरण मनु वे सारिया,
0: में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो बेतालिया।
1: कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारे आ।
0: जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो त निर्मल जियो, निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
1: कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी,
0: जन्म रतन जिनी खटिया।

विचार जैसी दृष्ट करेता सा होए अपे आप अप्रभ सोए जो किसकी न सो अपने रंग सब ते दूर सबु के संग बुझे देखे करे बबे कापे आपे कापे अनेक मरना बिन से आवे ना जाए नानक सद ही रह समाए आप।

हर गुण गाए राम रंगेतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए राम रंगेतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए राम रंगेतड़ा, गुरमुख

उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कहीं ना जेहियां यार वे हिक डूं हिक चाड़े हों।

सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस

को आगे फला इन्हीं को दियो जग में जस और दियो सल्पी को मोग्रह में मनते तनते सिर लाओ।